मन मिल संत जना जस गायो, मन मिल संत जना जस गायो, हर हर रत्न रत्न हर नीको, गुर सत गुर दान दिवायो रहाओ। तिस जन कौ मन तन सब देवो, जिन हर हर नाम सुनायो, तन माया संपै तिस देवो, जिन हर मीत मिला।

सा व्रत पूजा जित हर स्यों प्रीत लगाए, बिन हर प्रीत होर प्रीत सब झूठी, एक खिन महें बिसर सब जाए। तू बेअंत सर्व काल पूरा।

जब आणे बलवंच कर झूठ तब जाने जग जितिया। ऐसा बाजी संसार ना चेतै हर नामा खिनमह दिन

आई ऐसा इस हर धन का शाह हर आप है संत हो। इस हर धन का शाह हर आप है संत हो, जिसनों दे सो हर धन लद चलाई।

मान सरोवर है वडभागी पुरख लहन। गुर सरवर मान सरोवर है वडभागी पुरख लहन। सेवक गुरमुख खोजया से हंसले नाम लहन। नाम ध्यान रंग स्यों गुरमुख नाम लगन तुरपू।

करते आवहो सुन हर गुण तीने सह सुभाए गुरमत सहजे नाम ते आए जिन को तुर लिखिया तिन गुर मिलिया तिन जन्म मरण पाओ भागा अंदर हो दुरमत दूजी खोई सो जन हर लिव लागा।

तह सच पसरिया अवर ना दूजा कोई। सच्चे उपजै सच समावै मर जन्मै दूजा होई। नानक सब किश आपे करता आप करावै सोई। सच्चे भगत सो है दरबार।

सब महे रव रहया सो प्रभ अंतर जामी राम, गुर शब्द रवै रव रहया सो प्रभ मेरा स्वामी राम, प्रभ मेरा स्वामी अंतर जामी, घट घट रवया सोई, गुरमत सच पाइया।

तह जन्म न मरना, तह जन्म न मरना आवन जाना, बहुण न पाईए जुनिए, नानक गुर परमेश्वर पाया, जिस प्रसाद इच पुनिए।

गुर वचनी मन सहज ध्याने हर कै रंग रत्ता मन माने मन मुख भरम भुले बौराने हर बिन क्यों रहिए गुर शब्द पछाने।

मन मुख बंद विचारे सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी सदा रहे हर नाले तिन की गहन गत कही ना जाई सच्चा आप सवारे परम पुलाने से मन मुख कही है ना उरवार ना पारे जिसनों

मन अभिमाना कहत सुनत सबे सुख पावहे मानत पाहे निधाना बिलावल महला तीजा गुरमुख प्रीत जिसनों आपे लाए तित कर बिलावल गुर शब्द सुहाए।

मस्तक लिखत लिखे गुर पाया, हर हृदय हर बसना रहाओ। माया ग्रस्त प्रमत है प्राणी, रख ले वह जन अपना। ज्यों प्रहलाद हरनाक्ष ग्रस्यो, हर राख्यो हर शरण।

बलिहारे बिलावल महला पंजवा बिखै बन फीका त्यागरी सखिए नाम महारस पियो बिन रस चाखे बुढ़ गई सगली।

तन तन हर साध जन सखिए नानक जिन्नी नाम ते आया जाए बस हो वड पागनी सखिए संतां संग समाइए तह दुख ना भूख ना रोग ब्यापे चरण कमल लिव लाइए तह दुख ना भूख ना रोग ब्यापे चरण कमल लिव लाइए तह जन्म ना मरण ना आवन जाना।

निस्बा सरमन अनद होत चितवत किरपाल रहाउ। जगत उदाहरण साध प्रभ तिन लाग हो पाल, मोको दीजै दान प्रभ संतन पगराल उकत सियान।

कोलकुटंब उधारे सफल सेवा गुरुदेव की निर्मल दरबारे। नीच अनाथ अजान मैं, नीच अनाथ अजान मैं, निर्गुण गुणहीन नानक को कृपा पही दास अपना कीन। बिलावल महला पंजवां।

रहाओ। करण कारण समरथ है तिस बिन नहीं होर, नानक प्रभ शरणागति साचा मन जोर। बिलावल महला पंजवा सिमर।

दृष्ट दृष्टाए अब महान खोए खोए खोई हों मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए अब महान खोए खोए खोई हों मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए अब महान खोए खोए खोए खोई हों मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए अतुल अतुल अतुल नह तुलिया।

पूर्ण पूर रहे संपूर्ण शीतल शांत दयाल दई काम क्रोध तृष्णा अहंकारा तनते होए सगल खई सत संतोख दया धर्म सोच।

संग हर बुहिया जब जगन्नाथ जगदीश पुछैया शरण परे से जन उबरे ज्यों प्रहलाद उदार समैया रहा पार अठा रहे मह चंदन ऊतम।

सब विद हर हर आप बनैया, जिस सतगुर भेटे सो कंचन होवै, जो तुर लिखिया सो मिटै ना मिटैया। रतन पदार्थ गुरमत पावै, सागर भगत भंडार खुलैया, गुर चरणी एक

रख रख चरण हर ताल पूरैया, हर कै रंग रत्ता मन गावै, रस रसाल रस शब्द रवैया, निज कर धार चुवै।

अनक जतन कर राखी फिर लपटाई। जरा जीवन जोबन गया किश किया ना निका, इहो जी अरा निर्मोल को कौडी लग मीका।

में सगले कुल उधरे नाम हमारे कार्य सीध नाम संग मनुआ गीध नामे ही हम निरपौ पहे नामे आवन जावन रहे।

कट कट अंतर सर्व समाही, अपने दास का हलत पलत सवार, पतत पावन प्रभ बिरद तुम्हारे। औखद कोट सिमर गोविंद, तंत मंत भजिय भगवंत,

पछाणे। ऐसा ज्ञान विचारे कोई तिसते मुक्त परम गत होई रहाओ। दिन मह रैन रैन मह दिनियर उसन सीत बिद सोई। ताकि गत मित अवर न जाने गुरबिन समझ न होई। पुरख मह नार नार मह पुरखा बूझो ब्रह्म ज्ञानी। धुन मह ध्यान ध्यान मह जानिया गुरमुख अकथ कहानी। मन मह जोत जोत मह मनुआ पंच मिले गुर भाई। नानक तिन

फलत फलत होहे दोहें सुहेले। अचर्ज पुरख त्याओ रहाव, उठत बैठत हर जाप, बिनसै सगल संताप, बैरी सब होवह मीत, निर्मल तेरा होवै चीत। सब ते उत्तम इहो करम, सगल धर्म मह श्रेष्ठ धर्म, हर

खिन महवेश करहे नटुआ ज्यों मो पाप महंगलत गया। इत उत माया देख पसारी मो माया कै मगन भया करहे विकार विथार कन्हेरे।

गुरमुख केती शब्द उधारी संत हो रहाओ। ममता मार हम सुख है त्रिभवन जोत तुम्हारी, मनसा मार मने महरा खै सतगुर शब्द भी।

जे कुटंब छोड़ पर पवन करह ग्रह शरीर मह हर हर नाम गुर प्रसादी अपना हर प्रबल है। इहो जगत मिट्टी का पुतला जोगी इस मह रोग वड्डा तृष्णा माया।

सतसंगत मह नाम निर्मोलक वड्डा भाग पाया जाई। परम ना भूलो सतगुर सेवहो, मन राखहो एक ठाई।

नाम नरहर निधान जिनकै रस भोग एक नारायणा रस रूप रंग अनंत बीठल सास सास ध्याएणा।

प्रभ बिपत निवारण तिस बिन अवरना कोहे जियो, सदा सदा हर सिमरिय जल थल महियल सोए जियो। जल थल महियल पूर रहया, एक निमख मन होना विसरै, गुर चरण लागे दिन सभागे,

सहज गुफा कर जाने साचा नानक साचे भावै साचा। किस कारण रह तजो उदासी किस कारण इहो भेख निवासी। किस वखर के तुम वणजारे क्यों कर साथ लंघावहो पारे। गुरमुख खोजत पए उदासी दर्शन कै ताई भेख निवासी। साच वखर

सुख नारद बचन सब सृष्ट करेन सच्चै लाए सच लगे सदा सच संभालेन नानक आए से परवान पए नानक आए से परवान पए जे सगले कुल तारेन महला तीजा

पौड़ी मनमुख मोह गुबार है दूजै भाए बोलै दूजै भाए सदा दुख है नित नीर विरोलै गुरमुख नाम ते आई है माथ तत कढ़ोलै अंतर प्रगा

पौड़ी सेजन साचे सदा सदा जिन्नी हर रस पीता गुरमुख सच्चा मन वसै सत सौदा कीता सब किश कर ही माहे है।

हर शरण आयो दास तेरा प्रभ ऊच अगम मुरार। कडले हो पौजल बिखम ते जन नानक सद बलिहार।

ज्यों ज्यों किरत चलाए त्यों चलिए तौ गुण नाही अंत हरे तौ गुण नाही अंत हरे चित चेतस की नहीं बावरिया हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ।

0: सुख है।
1: गुर सेवा सदा सुख है, जिसनो हुक्म मनाए। सोयना रूपा सब तात है, माटी रल जाई। बिन नावै नाल न चली, सतगुर

मन हर भगती संग सीवना, मात्या हर रस महराते, तिस बहुड़ना कबहू औखीवना, मिलियो तिस सर्ब निधाना।

सुख दुख हीते अमर अतीता गुरमुख निज कर पाएंदा शाम वेद रिग जुजुर अथर्वण।

गुरमत कृष्ण गोवर्धन थारे, गुरमत सायर पाहन तारे। गुरमत लेहो परम पद पाइय, नानक गुर भरम चुकाया। गुरमत

निर्मल शब्द कमाया, अदृष्टिय गोचर नाम अपारा, अतरस मीठा नाम प्यारा, नानक को जो

यह भव जल जगत शब्द गुर तरिया अंतर की दुविधा अंतर जरिया पंच बाण ले जम कौ मारे गगनंतर तनख चढ़ाया साकत नर शब्द सुरत क्यों पाई है शब्द सुरत।

एक बह सुनह सुनावह काना, अजगर कपट कहो क्यों खुलै, बिन सतगुर तत ना पाया, करह विभूत।

मन हाथी पाखंड धर्म प्रीत नहीं हर स्यों पाखंड धर्म प्रीत नहीं हर सों गुर शब्द महारस पाया कुदरत देख रहे मन मानिया गुर शब्दी सब

मारी आन दिन जलत रह है दिन राती परम पेस परमाई है। एक ग्रह कुटुंब में सदा उदासी शब्द मुए हर

ना गुरमुख होवै सो सच कमावै साची करनी सारी हे कार कमाई जो मेरे प्रभ पाई हो मैं तृष्णा शब्द बुझाई गुरमत सदहि अंतर शीतल हो मैं मार निवारी हे सच लगे।

पूरा सतगुर भगत दृढ़ाए, गुर कै शब्द हर नाम चित लाए, मन तन हर रविया कट अंतर, मन भीने भगत सलाहा है। मेरा प्रभु साचा असुर संहारन।

गुरमुख होवे सो काया शुद्ध है आप है आप मिलाएंदा काया विच तोटा काया विच लाह।

आनंदन गुण रव है दिन राती, आनंदन गुण रव है दिन राती, रसना हर रस पाया, शब्द मर है सिमरन सवार है, हर के गुण हृदय उरतार है, जन्म सफल हर चरणी लागे, दूजा पाओ चुकाया, हर जियो मिले आप मिलाए, गुर कै शब्दे आप गवाए, आनंदन सदा हर

कुसंगत बहै सदा दुख पावै दुखो दुख कमाया। सतगुर बाजहु संगत ना होई बिन शब्दे पार न पाए कोई। सहजे गुण रहै दिन राती ज्योति ज्योत मिलाया। काया बिरख पंखी विच वासा अमृत जुग है गुर शब्द निवासा। उड़ है ना मूले ना आव है ना जाही निज घर वासा पाया। काया सुध है शब्द विचार है।

गुण निदान मंतन महरव्या, जन्म मरण की जोन ना पव्या, दुख विनाश किया सुख डेरा, जहाँ तृप्त रहे आगाई है।

पाखर शराशरयत ले कम्मावहो त्रिकृत तर्क खोज टोलावहो मारफत मन मारहो अबदाला मिलहो हकीकत जित फिर ना मरा कुरान कतेब दिल माहे कमाही दस औरात रखो बदराही पंच मर्द।

गर्व अगन मह जिन्हें उबारिया रखत किरम मह नहीं संघारिया अपना सिमरन दे प्रतपालिया ओ सगल घटा का मालका चरण कमल शरणाई आया साध संग है हर जस गाया।

बात खोई। बहले पेख पवह दिन राती हों मैं रोग न जाई। पढ़ पढ़ लू जह बाद बखान है, पढ़ पढ़ लू जह बाद बखान है। मिल माया सुरत गवाई सतगुर सेव है।

प्रहलाद आप विगड़िया, प्रहलाद आप विगड़िया, सब चाटड़े बिगाड़े, दुष्ट सभा में मंत्र पकाया, प्रहलाद का राखा हुए रघुराया। हाथ खड़

रहाउ। आन दिन भगत कर है दिन राती, दुविधा शब्द खोई, सदा निर्मल है जो सच राते, सच बसिया मन सोई, मूर्ख दुविधा पढ़ है।

कोई जिस कौ तुम हर राख्या पावे तिस कै नेड़े कोई ना जावे। तू जल थल महियल सब तै भरपूर, तू जल थल महियल।

पंजवां कोट मनोरथ आव है हाथ, जम मार्ग कै संगी पांथ, गंगा जल गुर गोविंद नाम।

रहाओ। काल युग में एक नाम उधार, नानक बोले ब्रह्म विचार। पैरों महला पंजवा सतगुरु सेव।

ठाकुर छोड़ दासी कौ सिमरह मनमुख अंध अज्ञाना हर की भगत करह तिन निंदा है निगुरे पशु समाना जियो पिंड तन धन सब प्रभ का साकत कहते मेरा अहम बुद्ध दुर्मत है मैली बिन गुर भव जल फेरा।

पंजवा निकट बुझै सो बुरा क्यों करै बिख संचय नित डरता फिरै है निकटे अर भेद ना पाया बिन सतगुर

अचिंत हम सोते। प्रभ तू है ठाकुर सब को तेरा, ज्यों भावे त्यों करहे निबेरा। द्वितीया नासत।